0: Pulse 98.5 FM.
1: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
0: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
1: रेडियो 2098.5 FM, मल्टीकल्चरल रेडियो.
2: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2082, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 22 मार्च 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. अवैध जुए और सट्टेबाजी पर सरकार का बड़ा एक्शन. 300 वेबसाइट और बेटिंग ऐप्स को किया ब्लॉक. पीएम मोदी ने देशवासियों को दी चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की शुभकामनाएं. अब बढ़ेंगी पीएफ की न्यूनतम पेंशन. भारत का बड़ा फैसला, रूस से भी खरीदेगा एलपीजी. एमईए ने बताया कि 9000 से ज्यादा भारतीय थे ईरान में. शिवालिक के बाद भारत पहुंचा नंदा देवी जहाज. 9,27,012 टन एलपीजी से मिलेगी बड़ी राहत. अब सुनिए समाचार विस्तार से. ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. खबरों के अनुसार सरकार ने अवैध जुआ और सट्टेबाजी की
3: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया 30 अगस्त 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार है. बाढ़ में राहत बचाव के लिए विदेशी मदद लेने को तैयार हुआ नेपाल. भारत से टीमें रवाना होने के लिए तैयार. 12 साल का बेमिसार सफर, जनधन योजना ने रचा इतिहास. खुले 59 करोड़ खाते, 3.17 लाख करोड़ से भर गई तिजोरी. 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत. कोयले पर निर्भरता होगी कम. कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम. खाने पीने के सामान पर अब दिखेगा लाल निशान. टेस्ट हारने के लिए एक पल की बेवकूफी काफी है. ऋषभ पंत के शॉर्ट सिलेक्शन पर बुरी तरह भड़के अश्विन. अब सुनिए समाचार विस्तार से. नेपाल में भीषण बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है. वहीं काठमांडू सरकार ने पहले विदेशी राहत टीमों को राहत और सहायता के लिए मना कर दिया था. वहीं बालन शाह ने अब इस फैसले को पलट दिया है. अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अब नेपाल सरकार समिति विदेशी विशेषज्ञों और खोज बचाव टीमों को अनुमति दे रही है. भारत ने नेपाल के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है. देश के हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरू की गई मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपनी सफलता के 12 शानदार साल पूरे कर लिए. 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना ने अब वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. योजना के 12 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो 19 अगस्त तक देश भर में 59.09 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं. इन खातों में कुल जमा राशि 3.17 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है. शुरुआत में इन खातों को जीरो बैलेंस खाता माना जाता था, लेकिन आज हर जनधन खाते में औसतन 5,356 जमा है. पिछले 12 सालों में प्रति खाता औसत जमा में 3.4 गुना की वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि गरीबों में भी अब बचत करने की आदत तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षमता विस्तार की गति बढ़ा दी है और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक फैक्ट शीट में बताया गया है कि इस समय में देश में 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। 7.5 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 9 संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। जल्द ही खाने पीने की वस्तुओं के पैकेट पर आपको अधिक चीनी नमक की चेतावनी दिख सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अधिक चीनी नमक या फैट वाले खाद्य और पेय पदार्थों के पैकेट पर लाल रंग का चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे उपभोक्ता उसे खरीदने के पहले स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को लेकर सचेत हो सकेंगे। नेस्ले, पेप्सिको और कोका कोला जैसी कंपनियों ने इस कदम का विरोध किया है क्योंकि इससे बिक्री पर असर पड़ने की आशंका है। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज के दौरान ऋषभ पंत के शॉट चुनने और फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज अभी तक उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं जो उन्होंने खुद से लगाई है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर उतरे पंत ने कुल 168 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल थे। हालांकि उनके आक्रामक अंदाज पर सवाल उठते रहे। अश्विन का मानना है कि पंत का स्वाभाविक आक्रामक खेल हालात के हिसाब से फैसले लेने की जरूरत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,47,860 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95.61 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 68.39 रुपए। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए।
4: क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें? पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें। NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
5: 2000 स्टेशन स्पॉन्सर।

नमस्कार सिडनी, बहुत बहुत स्वागत है दर्पण रेडियो पे आपका। आज के कार्यक्रम में थोड़ी आपाधापी हो गई है क्योंकि यहाँ पार्किंग की थोड़ी समस्या है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में आपका साथ दे रहे हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम का की रूपरेखा जो है वो हम जो है दो हमारे अतिथि हैं, एक ऋचा व्योम से हम बात करेंगे इस्कॉन जन्माष्टमी पे। इसके अतिरिक्त हम हरतालिका तीज के बारे में बात करेंगे और ये वार्ता प्रस्तुत करेंगे BGCA से नीता कुमारी और श्वेता कुमारी। इसके अलावा एक श्रद्धांजलि देंगे नेपाल ट्रेजेडी, हार्ट फेल्ट रिफ्लेक्शन एंड प्रेयर्स फॉर दोज अफेक्टेड। हमारे पास आज जो है वो महान संगीतकार और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी का जन्मदिवस है, उनको भी एक ट्रिब्यूट देंगे और इनके गीत आपको सुनाएंगे। तो प्रोग्राम लंबा चौड़ा है, सुनते रहिए, जुड़े रहिए। अब समय होता है प्रभु वंदना का और उसके बाद सुनते हैं एक सुंदर सा भजन जो जिसकी शुरुआत हो गई, लेकिन हम आपको पहले आज का विचार बताते हैं। तो आज के विचार में दो बातें हम आपको बताना चाहेंगे। पहला विचार तो ये है कि स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी ना करें कि स्वाभिमान ही मर जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा विचार जो है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है और बहुत डीपली इसको महसूस कर रही हूँ कि घर से निकलकर वापस सुरक्षित घर लौटना भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे लोग आंकते नहीं हैं। अब सुनते हैं ये भजन।

0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे शैलेंद्र जी की। उनका उनका जन्म दिवस है और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत हमें दिए हैं फिल्मी जगत को, जो हमारे घर में, हमारे दिल में जो है वो घर कर गए हैं। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को हुआ था और हाल में ही शुक्रवार को, गत शुक्रवार को हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। और रक्षाबंधन का पर्व जो है वो हम सब भारतीयों के बहुत दिल के करीब है, तो मुझे लगा कि क्यों ना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ रक्षाबंधन का सबसे फेमस गीत आपको सुनाते हैं। शायद आपको पता ना हो कि ये गीत उन्होंने लिखा है, तो आइए इससे शुरुआत करते हैं।
1: श्री ओम की नई रेस्पाइट के सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललौर बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डेमेंशिया सपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1-300-908-681। ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: श्रोताओं, बात करना चाहते हैं नेपाल की भयावह त्रासदी की। मन बहुत ही व्यथित है कि इतनी बड़ी घटना हुई, प्राकृतिक घटना थी या मैन मेड घटना ये रही, क्योंकि हम इतनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका ही ये परिणाम था। लेकिन जो भी हुआ, बहुत ही दुखित, सबके जीवन में हमेशा ही ऊपर नीचे चलता रहता है, दुख और सुख का मिलन रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको झकझोर के रख देती हैं। तो नेपाल की यह भयावह त्रासदी जो है वो ऐसी एक घटना है जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया है। कुछ भी त्यौहार या कुछ भी करने का मन नहीं लगता है। एक ऐसा सैलाब आया जिसकी भयावहता देखकर ऐसा लगा मानो प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया हो, और जैसे इस विनाशकारी जल प्रलय ने पूरी सृष्टि को ही निगल लिया हो। मैं पढ़ रही थी कि उसमें 30 मीटर की वॉल जो है वो बन गई थी पानी की। सोचिए, लोग तो उसमें चींटी की तरह बह गए होंगे। सोच के भी मन कांप जाता है। आपको, आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि 39 लोगों का एक ट्रूप गया था कैलाश दर्शन के लिए, और उनका अभी कुछ भी पता नहीं चला है। तो इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। लापता ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जो हैं वहाँ पे, उनके परिवारों के लिए हमारी विशेष प्रार्थनाएं हैं। महादेव से प्रार्थना है कि लापता लोग सुरक्षित घर लौटें और प्रभावित परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति और संबल मिले। हमारी प्रार्थनाएं उन सबके साथ हैं।

जी हाँ श्रोताओं, इतना मार्मिक ये गीत है और जिसे गा रहे थे SD बर्मन जी, और इसे लिखा था शैलेंद्र जी ने। जी हाँ श्रोताओं, आज के सभी गीत जो है वो शैलेंद्र जी के ही लिखे हुए रहेंगे, और इतने गीत हैं इनके जो आप सभी के बहुत करीब हैं, लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं मैं उनको सुनाने की कोशिश करूँगी। आज के विशेष फीचर में हम बताएंगे कि शैलेंद्र जी ने जो है किस तरह से गीत लिखे, और उनके गीतों में आम आदमी की पीड़ा सुनाई देती है, कभी प्रेम की मासूमियत, कभी सपनों की उड़ान और कभी जीवन दर्शन। जी हाँ, ये नाम शैलेंद्र जी का है जिन्होंने इस तरह के गीत हमें दिए। शैलेंद्र जी का पूरा नाम था शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र, लेकिन शैलेंद्र ही उसी नाम से वो गीत लिखते थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। आगे चलकर वो हिंदी फिल्म जगत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय गीतकारों में शामिल हुए। लेकिन शैलेंद्र जी की कहानी केवल एक सफल फिल्मी गीतकार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं को कविता में ढाला और फिर उन कविताओं को करोड़ों लोगों की आवाज़ बना दी। इनका सबसे प्रिय गीत आवारा हूँ आप सबको याद होगा। ये एक फिल्मी गीत नहीं था, उस दौर के उस आम इंसान की आवाज़ थी जो दुनिया की बंदिशों के बीच भी अपने रास्ते तलाश कर रहा था। फिल्म थी आवारा और उसका ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ, जिसको संगीत दिया था जय किशन जी ने और आवाज़ दी थी मुकेश ने। शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसे बहुत सारे ऐसे गीत दिए जो आज भी उतने ही जीवंत लगते हैं। राज कपूर की फिल्मों में शैलेंद्र के गीतों ने एक अलग ही दुनिया बनाई। बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, जिस देश में गंगा बहती है, जैसी अनेक फिल्मों में उनके गीतों ने कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया बल्कि किरदारों की आत्मा को भी आवाज़ दी। शैलेंद्र की सबसे बड़ी खूबी थी सरल भाषा में गहरी बात कहना। उनके गीत सुनने के लिए किसी कठिन साहित्यिक शब्दकोश की ज़रूरत नहीं थी, ये आम बोलचाल की भाषा में ऐसी बात कह देते थे जो सीधे दिल में उतर जाती थी, जैसे कि मेरा जूता है जापानी। कितना सरल गीत, लेकिन सबके दिलों में बस गया। इसके भीतर बहुत खूबसूरत विचार छिपा है। इंसान कहीं का भी हो, उसकी पहचान उसके दिल और उसके कर्म से होती है। शैलेंद्र जी ने देश, समाज और इंसानियत को अपने गीतों में बहुत खूबसूरती से पिरोया था। प्रेम के गीतों के भी ये शायर माने जाते हैं। वो सिर्फ सामाजिक और दार्शनिक गीतों के गीतकार नहीं रहे, प्रेम को उन्होंने जितनी सहजता और मासूमियत से लिखा वो भी बहुत अद्भुत है। उनके गीतों में प्रेम दिखावे वाला नहीं था, वो चुपचाप महसूस होने वाला प्रेम था। तो चलिए शैलेंद्र जी के आगे भी हम बात करते रहेंगे, सुनते हैं उनका एक खूबसूरत गीत और आगे बातचीत जारी रहेगी।

0: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
1: Har Ravivar suniye Darpan Hindi Karyakram, 98.5 FM par, subah 9 se 11 baje tak.
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: करी मास्टर्स का संदेश।
5: श्रोताओं, आपसे वादा किया था कि आज जो है हमारे पास दो मुख्य टॉपिक हैं और अतिथि भी पधार चुके हैं स्टूडियो में, तो बातें करने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। मेरे पिछले प्रोग्राम में जो हमने सावन स्पेशल किया था, आपको बताया था कि भारत में मुख्यतः तीन तरह की तीज मनाई जाती है। पहली होती है हरियाली तीज और कजरी तीज, दूसरी होती है और तीसरी होती है हरतालिका तीज। तो हरियाली तीज आपको पता ही है, हमारे श्रोताओं ने भाग लिया था। हरियाली तीज जो हमने क्रूज पे मनाया था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हरियाली तीज जो है वो सखियों का त्यौहार होता है, जब वो मायके आती हैं और रक्षाबंधन में वापस लौटती हैं और झूले झूलती हैं। तो वो सब कुछ हमने क्रूज पे इस बार किया और क्रूज पे झूला झूले बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आप सबका धन्यवाद जो उसमें शामिल हुए। कजरी तीज जो है, जिसमें मुख्यतः हम कजरी सेलिब्रेट करते हैं, कजरी उसमें गाते हैं और सावन की तो है बातें करते ही हैं। पूरे सावन में हम मेहंदी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। अब आज हम मुख्यतः बात करेंगे हरतालिका तीज के बारे में। तो हरतालिका तीज पे बात करने के लिए हमारे पास दो गेस्ट आए हैं, जो एक संस्था है BJCA, उससे पधारी हैं नीता कुमारी और श्वेता कुमारी जी। तो पहले तो उनका स्वागत करते हैं। नीता जी, श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण रेडियो पे।
6: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: धन्यवाद रीजा जी।
5: जी, तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानते हैं। नीता जी, आप बताइए कि ये BJCA संस्था क्या है और इनका क्या उद्देश्य है?
6: BJCA एक ऐसी संस्था, एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी संस्था है, लेकिन BJCA का मुख्य उद्देश्य ये है।
5: पूरा नाम क्या है BJCA का?
6: बिहार झारखंड महासभा।
5: जी,
6: तो एक्चुअली इसका मेन उद्देश्य ये है ना कि हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन वो ना एक्चुअली उस ढंग से पॉजिटिव उसमें काम नहीं कर रही हैं, पॉजिटिव ढंग से। तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, उनकी प्रॉब्लम यहाँ तो कुछ कुछ होती है, बट यहाँ की प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। इंडिया में ज़्यादा उनको परेशानी होती है, जिनके पेरेंट्स हैं। तो हमने एक ऐसा संस्था बनाया जिसको हमने सोचा कि हम शुरुआत करते हैं लोगों को एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर दे के कि अगर उनको इंडिया में ज़रूरत है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उस पर कॉल करे, बताए
5: जी,
6: और उनको वहाँ से हेल्प मिले। और अब ये ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है ना BJCA के अंदर कि लोग को अगर एक भी हेल्प होता है तो उनको ना 10 लोग आ जाते हैं सामने।
5: अच्छा,
6: हेल्प करने के लिए।
5: हाँ।
6: तो ये कल्चर डेवलप हो चुका है BJCA में धीरे धीरे। तो
5: BJCA
6: का एक्चुअली मेन उद्देश्य यही था कि एक लोगों को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले और उन्हें जब भी किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो 10 लोग उनके साथ हो।
5: बहुत। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि आप बिहार और झारखंड के लोगों को जोड़ना चाहते थे और उसकी संस्कृति को लाना चाहते हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका
6: जी,
5: है
6: जी।
5: तो ये बहुत अच्छी बात है और अच्छे उद्देश्य से आपने इसको शुरू किया
6: जी।
5: तो क्या, किस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं?
6: BJCA का भी ना पूरा एक साल कंप्लीट हुआ है 9 मई को।
5: अच्छा।
6: और हमारा पहला इवेंट लिट्टी चोखा था जून में, 15 जून के आसपास।
5: मैंने भी अटेंड किया था
6: जी जी, लास्ट
5: हमने और सुनील जी ने।
6: तो उसमें 600 लोग आए थे एक महीने के अंदर
5: जी।
6: और इस साल 1000 लोग आए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 25,000 बिहारी हैं।
5: अच्छा
6: जी। तो हम उसमें से 2000 को तो जोड़ चुके हैं अब तक, और आगे बाकियों को जोड़ने के लिए हमारी BJCA बहुत काम कर रही है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए इसमें
5: जी। नीता जी, आपको बता दें कि सुनील जी भी जो हैं वो बिहार से हैं
6: जी,
5: और मैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरी दोस्तें कहती हैं कि आपकी शादी हो गई तो आप भी बिहारी हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
5: और ऐसा भी मानते हैं कि वंस यू आर बिहारी ऑलवेज अबिहारी हैं। तो श्वेता जी आपका क्या कहना है, लिट्टी चोखा का कैसा रहा फेस्टिवल, सक्सेसफुल रहा?
7: लिट्टी चोखा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, हमने जितना सोचा था उससे अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला। सो फिर से मैं बीजेसीए से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। बीजेसीए बिहार झारखंड सिडनी चैप्टर जो है हमारा, एक कम्युनिटी तो है ही लेकिन हम लोग के लिए एक परिवार जैसा है। यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं, घर से इतने दूर रहते हैं
5: जी।
7: तो एक बड़ा परिवार है जिसमें सब लोग साथ और एक सूत्र में बांधने का एक जरिया है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू हो, चाहे एक सपोर्ट सिस्टम जो नीता जी ने बताया
5: जी।
7: कि इंडिया में रहने वाले हमारे परिवार को सपोर्ट चाहिए या यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, बच्चों को एक जो
8: अपने कल्चर से कनेक्ट, हाँ,
7: कनेक्ट कैसे हो, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि हम तो यहाँ पे आ गए हैं, हमने देखा है कि हम अपने कल्चर में पले बड़े हैं, लेकिन वो बच्चों में कैसे लाएं हम। तो एक बहुत ही अच्छा वो प्लेटफॉर्म है या परिवार है जिसमें बच्चे देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम लोग यहाँ एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं
5: जी।
7: तो इसका मुझे बहुत गर्व है।
5: हाँ।
7: और बहुत,
5: वैसे आप दोनों हैं कहाँ से, श्वेता जी आप कहाँ से हैं भारत में?
7: मैं रांची से हूँ,
5: रांची
7: झारखंड।
5: नीता जी?
6: मैं जमशेदपुर से, वहाँ भी हम अगल बगल से ही।
5: बिल्कुल, मैं गई हूँ जमशेदपुर, बहुत ही सुंदर शहर है और बहुत अच्छा लगा मुझे जाके। और मैं भोजपुरी तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन गीत मुझे आते हैं भोजपुरी के, गा सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, लेकिन सुनील मजाक बनाते हैं कि अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ।
7: तो
5: बहुत अच्छा लगा था मुझे लिट्टी चोखा का आपका जो फेस्टिवल हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था। लिट्टी भी बहुत जानदार और शानदार बनी थी और इतने लोगों को, मेरे ख्याल से 1000 लोग थे आप बता रहे हैं, इतने लोगों को इतने अच्छे से संभालना और इतना केयरिंग माहौल था वो, कि किसी, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी थे।
7: हाँ बिल्कुल,
5: और
7: पूर्वांचल भी बिहार का ही एक
5: बिल्कुल
7: पार्ट
5: है। मैं तो यही मानती हूँ कि पूर्वांचल के लोग भी जो हैं वो एक ही संस्कृति से आते हैं।
7: हमारा खान पान, रहन सहन और जो संस्कृति जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं काफ़ी सिमिलर सा है, बिहार, पूर्वांचल, झारखंड। आई थिंक अगर हम 50 साल 60 साल पहले की बात करें तो साथ में ही थे।
5: तो और हरतालिका तीज की आप बात कर रही हैं, तो हरतालिका तीज भी पूर्वांचल में ही मनाई जाती है, यूपी, बिहार और झारखंड में। तो आइए क्यों ना एक पहले हम गीत सुन लें हरतालिका तीज से ही जुड़ा हुआ, और उसके बाद हरतालिका तीज की चर्चा जारी रखते हैं। धन्यवाद।

0: देता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।
1: ना खपुरा ना

0: बम भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: कितना खूबसूरत गाना था श्रोताओं ये। और आपको बता दें, ये एक नीम करोली बाबा पे फिल्म बनी है, उससे ये गीत लिया गया है। और वेरी अर्थी वॉइस जो कलाकार हैं, और उसमें स्टोरी यही होती है कि भाई पार्वती जी ने जो है वो शिव जी के विवाह के लिए जब अपने पिता को बताया तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि अघोरी थे शिव जी, गले में सांप डाले रहते थे। तो कैसा लगा होगा एक पिता के लिए, हम खुद को सोच के अगर देखें कि ऐसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा जो है राख मले हुए हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं। तो और हम तो आज क्वेश्चन करते हैं, अगर बच्चे बोल देते हैं कि भाई यहाँ शादी करना है ये करना है तो 10 बार पूछते हैं, उस ज़माने में सोचिए लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो है वो साक्षात शिव हैं, है ना। और पार्वती जी को तो पता ही था कि भाई वो स्वयं भगवान हैं। तो आइए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हम बातचीत करते हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो श्रोताओं, जैसा कि बताया कि हरतालिका तीज जो है वो महिलाओं के लिए पूर्वांचल में, उत्तर भारत में, बिहार यूपी में बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि पार्वती जी ने ये व्रत रखा था और इसी व्रत के प्रताप से और इसी व्रत के पुण्य से उन्हें शिव जी मिले थे और शिव जी के बराबर उनको आसन मिला था। तो चलिए पूछते हैं अनीता जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि बताइए हरतालिका तीज को महिलाओं के लिए विशेष पर्व क्यों माना जाता है, इस व्रत और पूजा का महिलाओं के जीवन में क्या महत्व है?
2: एक्चुअली हरितालिका तीज जो है ना वो सुहागिने औरत ही करती हैं
1: जी।
2: हरितालिका जैसे बाकी तीजें जो होती है वो सब करते हैं जो मैरिड अनमैरिड, बट हरितालिका तीज स्पेशली बिहार में हमने जो देखा है वो सुहाग के लिए ही करती है
1: जी।
2: और ये इतना कठिन पर्व है कि मतलब सच में ये कह सकते हैं कि पति के लिए जो बहुत अपना वो रहता है भाई, नेक्स्ट ऐसा मान्यता है कि अगले जन्म में भी हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, अगले 7 जन्म तक हमारा साथ ऐसा बना रहे
1: जी।
2: इसके लिए महिलाएं 24 घंटा तक बिना कोई पानी पिए, बिना कुछ खाए निर्जला व्रत रखती है
1: जी।
2: तो इस व्रत का महत्व अपने आप में इतना ज्यादा है और निर्जला व्रत रख के माँ गौरी शंकर भगवान का शाम में पूजा करती है
1: जी।
2: तो जैसा कि आपने बोला कि जब माँ गौरी ने अपने पिताजी से ये कहा कि उनको शंकर भगवान से शादी करनी है
1: जी।
2: जो कि बिल्कुल गले में नाग और शरीर पे बबू तो अब रखते हैं, तो उनके पिताजी को कैसा लगा होगा। तो लेकिन उसमें भी था ना, गौरी माँ को तो शंकर भगवान ही चाहिए थे
1: जी।
2: तो बिना अपने पापा को बताए निकल गई थी, छुप के तपस्या किया इतने साल तक सिर्फ शंकर भगवान को पाने के लिए
1: जी।
2: और बिना अन्न जल का, बिना खाए पिए बरसों तक वो तपस्या करती रही
1: जी।
2: लास्ट में उनको जाके शंकर भगवान ने बोला भाई तुम्हारे जिद के आगे तो मैं भी हार गया तो फिर जाके उन्होंने गौरी माँ को वहाँ पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने उनको उनसे ही मांग लिया कि मुझे तो बस आप चाहिए तो तीज का ये एक मान्यता है कि इसलिए औरतें इतना कष्ट सह के, इतना अपना फास्ट रख के सब ये व्रत करती है कि भाई अगले जन्म में भी मुझे यही चाहिए
1: जी। और इस जन्म में भी उनके वेलबींग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे श्वेता जी? मैं भी ये व्रत करती हूँ श्रोतागण, और आपको बता दूँ वाकई बहुत कठिन है और सूरज को देख के अर्घ देते हैं हम, जैसे एक सूरज से शुरू करते हैं और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तब ये व्रत तोड़ा जाता है। तो काफ़ी कठिन है निर्जला रह के। और तो आपका, आप दोनों करते हैं इस व्रत को?
3: जी बिल्कुल
1: जी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है श्वेता जी?
3: तो जैसा नीता जी ने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है इस व्रत
1: जी,
3: का
1: जी।
3: लेकिन हम लोग एक और बात यहाँ जाने कि हरितालिका का मतलब क्या होता है
1: जी।
3: हरितालिका 2 वर्ड से बना है, हरित एंड अलिका
1: जी।
3: हरित इसलिए कि हरित का मतलब है हर के ले जाना,
1: अच्छा।
3: और अलिका का मतलब है सखियां। तो हुआ ये था, जब जैसा नीता ने बताया कि वो पार्वती जी माँ गौरी शिव जी से शादी करना चाहती थी, और जब उनके पिताजी को बताया यमवान को तो उन्हें नहीं सही लगा
1: जी।
3: तो उनकी सखियों ने बोला, उनको हर के ले गई वन में कि तुम शिव की उपासना करो, शिव की तपस्या करो, क्योंकि शिव जब प्रसन्न होते हैं तो कोई भी वर दे देते हैं
1: जी।
3: तो इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा, और ये हम भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि में करते हैं
1: जी,
3: जो इस साल 14 सितंबर सोमवार को है।
1: अच्छा, सोम शंकर जी के दिन ही पड़ा है।
3: हाँ, बिल्कुल,
1: तो बहुत ही सौभाग्य की बात।
3: सो डेफिनेटली लंबी आयु के लिए, मंगल कामना के लिए, और पति पत्नी का अच्छा साथ प्यार बना रहे और परिवार में खुशहाली रहे, ये होता है
1: जी। तो अब आते हैं कि BJCA का इसमें क्या रोल है। इस बार BJCA की ओर से भक्तों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री तीज पूजा थाली की विशेष व्यवस्था की गई है, और तीज पूजा का आयोजन हो रहा है, तो ताकि सभी लोग मिल के एक साथ सामूहिक पूजा कर सकें। तो उस बारे में बताइए कि क्या कार्यक्रम है ये।
3: तो मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगी, बैक इन बिहार झारखंड, जब हम बच्चे थे और मम्मियाँ ये करती थी, तो मम्मियाँ डेफिनेटली मोहल्ले में जो सभी आंटियाँ होती थी, सब लोग मिलके तीज का व्रत करते थे।
1: थोड़ा पास आ जाइए।
3: बिहार और झारखंड की एक जो हमारे संस्कृति की खूबी है ना, कोई भी त्योहार जब हम मनाते हैं सब लोग साथ मिलके मनाते हैं, तो ये त्योहार एक अकेले परिवार का नहीं होता है, एक समुदाय का हो जाता है।
1: बिल्कुल,
3: तो सब लोग 10-15 लोग साथ मिलके शिवलिंग बनाते थे मिट्टी से, और उसकी पूजा करते थे, और दूसरे दिन उसको नदी में प्रवाहित करते थे। जब हम लोग यहाँ मिले तो हम नीता और कुछ फ्रेंड्स तो बहुत दिन से साथ में करते हैं, तो
1: अच्छा।
3: उससे एक फेस्टिवल का या माहौल मिलता है कि हम लोग अच्छे से तैयार होके शाम को साथ में पूजा किया, गीत गाया इसके बाद, और दूसरे दिन सुबह फिर जो जो रिचुअल्स होते वो किया। तो पिछले बार जब हमारा BJCA बना तो हमने सोचा, और बहुत लोग हमारे पास आते थे ये कह कि अच्छा भाभी दीदी या जो भी बोलते हैं कि आप लोग करती हैं, हम लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक BJCA कम्युनिटी के लिए हरितालिका तीज का पूजा साथ में करें, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हो पाए, एक सिर्फ 10-15 लोग नहीं। और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पिछले बार हमारे यहाँ 100 फैमिली आए। हाँ हाँ
1: जी जी।
3: और पूरे उल्लास के साथ हमने पूजा किया, आरती की, सबने साथ में फोटो वगैरह जो भी ये होता है। तो इस बार हमने सोचा कि ठीक है, हम लोग उससे भी बड़े स्तर पे करेंगे। और जो लोग यहाँ पे कुछ लोग बहुत दिन से रहते हैं, कुछ लोग कम दिन से रहते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए
1: जी।
3: या तो उनके सुविधा के लिए जो हमने सोचा कि हम लोग उनकी व्रत की थाली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दें, जिससे जो व्रती है
1: क्या क्या होता है।
3: सो व्रत की थाली में बेसिकली हल्दी, कुमकुम, सुपारी, बेलपत्र, फूल, पान, और जो भी पूजा के लिए चाहिए होता है वो हम व्रत की थाली में अरेंज कराते हैं। सो दैट कि व्रती के लिए वो दीपक, अगरबत्ती, जितनी भी पूजा की सामग्री होती है जो व्रती होती है उनके लिए वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। वो लोग आते हैं और बेसिकली सब लोग फिर साथ में बैठ के पूजा करते हैं। तो ये हमने सोचा कि हम लोग अपनी तरफ से अरेंज कराएंगे तो सबके लिए ये बहुत ही सहूलियत हो जाएगा,
1: सुविधाजनक कर दिया। हाँ, सबके लिए, क्योंकि एक तो ये व्रत बहुत कठिन होता है और सामान को जुटाना, पूजा की तैयारी करना आसान नहीं होता है, और काफी लोग जो है वर्क करते मैं तो नहीं कर पा

0: और सबसे अच्छी बात है कि पतियों को आप बुलाते हैं कि नहीं, कि सिर्फ
1: बिल्कुल सब पति बच्चे
0: तो उनका
1: जैसा
0: क्या
1: मैं
0: रोल रहता है, वो मदद करते हैं?
1: मदद करते हैं, बच्चों को
0: नहीं, एज ए
1: संभालते
0: वॉलेंटियर वो बहुत अच्छा वर्क करते
1: हैं।
0: हैं,
1: अच्छा,
0: क्योंकि हम तो व्रती बैठे रहते हैं ना पूजा के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: अब किसी को घी चाहिए, किसी के
1: हाँ
0: फूल
1: हाँ
0: कम हो गए, किसी के
1: हाँ
0: अक्षत कम हो गए,
1: जी,
0: तो वो एज ए वॉलेंटियर सबका ध्यान रखते हैं
1: बहुत
0: कि
1: अच्छी
0: किसी को
1: बात।
0: भी ना कमी ना हो पूजा
1: हाँ,
0: के बीच में ना, तो वो उनके थाली का पूरा ध्यान रखते हैं कि उसमें कुछ कम ना पड़े।
1: और ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी त्योहार जो है ना, और खासकर जब जिसके लिए आप कर रहे हैं, पति के लिए, अगर वो ही शामिल ना हो और हेल्प ना करें तो ये जो है मुश्किल हो जाता है।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: ये बताइए नीता जी, आपसे पूछते हैं कि हरतालिका तीज केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार, आस्था और समुदाय जुड़ाव का भी पर्व है।
0: जी
1: BJCA इस कम्युनिटी टुगेदरनेस को किस तरह बढ़ावा देना चाहता है?
0: जी एक्चुअली BJCA इस तरह के इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जैसे ये तीज है एक, और एक छठ का आपको शायद पता होगा, बिहार में बहुत बड़ी
1: जी जी
0: आस्था है,
1: जी
0: मतलब उसके लिए लोग ना
1: वो तो
0: वो
1: अल्टीमेट पर्व है।
0: बहुत बहुत,
1: हाँ,
0: तो ना ये सब हम BJCA से भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे
1: अच्छा,
0: छठ।
1: छठ का भी
0: जी
1: पर्व करते
0: छठ
1: हैं।
0: में हमारे वॉलेंटियर्स देखने लायक होते हैं कि किसी को भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, हमारा ग्रुप
1: जी
0: है
1: जी
0: छठ का, अगर वो घंटे दूर भी है ना, तो हमारे वॉलेंटियर उनको वो सामान वहाँ पहुँचा के आते हैं।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ, और अगर किन्हीं को जैसे छठ है तो शामिल होना है, मान लीजिए कि छठ तो बहुत बड़ा पर्व है
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: लिए, इनफैक्ट सारे
1: जी
0: पर्वों से बड़ा पर्व महापर्व है,
1: हाँ
0: तो उसमें लोगों को लगता है ना कि हम कहीं भी बस अटेंड कर ले, थोड़ा सा कुछ तो ऐसा करें कि
1: हाँ
0: बस अर्घ दे सकें, तो
1: बिल्कुल,
0: उसमें हम क्या करते हैं ना कि जितने भी व्रती हैं उनसे, मतलब ये तो उनका व्रती का खुद होता है कि भाई हमारा दरवाजा खुला है, जो भी है
1: हाँ
0: आ जाओ बस पूजा करने के लिए। तो मतलब ये सब चीज़ें जो BJCA है ना ऑर्गेनाइज ढंग पे करती हैं, लोगों को बताना कि यहाँ छठ हो रहा है, आप यहाँ जा सकते हो, तो ये सब जो एक डेवलप हो रहा है कल्चर ना, जो साथ में आने का, कि
1: बिल्कुल,
0: लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तीज में आते हैं लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। लिट्टी चोखा में आते हैं, बहुत लोग यहाँ पे किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे
1: जी
0: आके लोग एक दूसरे से मिलते हैं,
1: बहुत
0: तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब एक हम इसके अंदर करते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा इजी भी हो जाता है कि BJCA के अंदर ये सब चीज़ें हैं, साथ में आए, एक
1: बिल्कुल,
0: दूसरे से मिले।
1: तो लोग जुड़ना भी चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और पहले ज़माने में ये होता था कि हम भारतीय जो हैं, या हमारी जो अगली जनरेशन है, वो मुख्य त्योहारों को ही जानती थी, जैसे दिवाली, दशहरा,
0: जी
1: होली, है ना, इन त्योहारों के बारे
0: जी
1: में ज़्यादा बात होती
0: जी
1: थी।
0: जी
1: अब जो ये छोटे छोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार हैं,
0: हाँ
1: उस बारे में भी, जैसे BJCA संस्था है, या अभी मैथिली का कार्यक्रम आ रहा था, उसमें मैथिली कल्चर को के बारे में बातचीत हो रही थी, जो मुझे पहले नहीं पता था उतना, लेकिन इन कार्यक्रमों के जरिए आप भारत की संस्कृति को बढ़ावा भी दे रहे हैं
0: जी
1: और उजागर भी कर रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल त्यौहार हैं ये सब,
0: जी
1: तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। अब ये बताइए कि कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है ये तीज का फेस्टिवल?
0: तीज का ये फेस्टिवल इस साल 14 सितंबर को हो रहा है,
1: जी
0: और ये मेडिसन ड्यूरल में एक मेडिसन हॉल है, मतलब कम्युनिटी
1: जी
0: हॉल है,
1: जी
0: वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने वहीं पे किया था।
1: तो क्या नियम है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप बताइए श्वेता जी।
0: जी तो ज्वाइन करना, बेसिकली हमने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेवलप किया है, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन भर के, तो हमें भी पता हो कितने व्रती आ रहे हैं, कितने लोग आ
1: जी
0: रहे हैं, क्योंकि जो लोग नॉन व्रती हैं उनके लिए खाने का अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो हमें भी पता हो कि हमें कितने लोगों को केटर करना है।
1: जी जी
0: और शाम को बेसिकली व्रती और उनके परिवार वाले, पूजा पूजा के बाद जो लोग नॉन व्रती हैं उनके लिए खाने का आयोजन, और इसके बाद तो एक बहुत अच्छी सी परंपरा जो हमारी है, जो पूजा के बाद हम लोग व्रती लोग होते हैं और महिलाएं होती हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। आप शायद
1: अच्छा,
0: जानती होंगी कि बिहारी संस्कृति में जितने भी हमारे पर्व होते हैं उसमें हम लोग नाक से सिंदूर, महिलाएं
1: हाँ
0: खासकर नाक से
1: बिल्कुल
0: सिंदूर लगाती हैं, और
1: बिल्कुल,
0: वो बड़ा ही अच्छा दृश्य होता है।
1: हाँ
0: इसके बाद सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाना,
1: सब एक जैसे
0: एक
1: दिखते
0: दूसरे
1: हैं।
0: को खोइंचा देना, और
1: हाँ,
0: इसके बाद सबके साथ फोटो खिंचाना। तो
1: खोइंचा के बारे में थोड़ा बताइए, खोइंचा क्या होता है?
0: हाँ, तो खोइंचा का हमारे बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। तो नॉर्मली इसका ये होता है, जब बेटियां घर से जाती हैं,
1: जी
0: और कोई भी बेटियां या बहुएं, तो घर भरा पूरा

0: है। इसके लिए उनके आंचल में चावल, जिसको अक्षत कहते हैं हम, दूब, हल्दी और थोड़े पैसे
1: जी,
0: डाल के देते हैं कि बेटी का घर भरा पूरा रहे और अपना घर भरा पूरा
1: थोड़ा
0: रहे।
1: सा रख भी लेते हैं सूट
0: थोड़ा सा
1: में
0: रख भी लेते हैं कि हम लोग दे तो रहे हैं लेकिन अपना घर
1: जी
0: खाली करके नहीं दे रहे हैं।
1: जी
0: जब तुम दोबारा आओ तो हमारे पास और हो जो तुम्हें और दे सकें।
1: कितनी सुंदर परंपरा है देखिए, और भावना कितनी अच्छी है। कई भागों में, देश के अन्य भाग में खोइचा की जगह गोदी भी लोग कहते हैं कि गोदी पूजना है ना, तो एक वही उसका सिग्निफिकेंस है कि आप जो है जिसको दे रहे हैं गोदी या जिसको खोइचा दे रहे हैं उसका भी घर भरा रहे और हमारा घर भी भरा रहे। तो बहुत सुंदर परंपरा है
0: और सिंदूर लगाना
1: जी।
0: कि तुम्हारा मांग भरा रहे और अपना भी, तो एक दूसरे को सिंदूर। तो सिंदूर हमारे लगाने का ये होता है कि जब एक सुहागन स्त्री को सिंदूर लगाते हैं और वो स्त्री भी आपको सिंदूर लगाती है, मतलब दोनों का सुहाग हमेशा बना रहे।
1: तो नीता जी, नाक से क्यों सिंदूर लगाते हैं?
2: नाक से सिंदूर लगाने की एक्चुअली ये परंपरा है ना हमारे यहाँ, ये कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर होती है ना पति
1: अच्छा,
2: की उम्र उतनी लंबी होती
1: क्या
2: है, जितना
1: बात
2: हम
1: है।
2: लंबा सिंदूर लगाते हैं नाक से। इसलिए एक बहुत ही ये हमारे यहाँ शादी में भी हमारा ऐसा होता है ना कि नाक से पहले तो सिंदूर पड़ता है, सिंदूर दान होता है, उसके बाद जितनी महिलाएं होती है ना सुहागिन
1: जी
2: महिलाएं
1: जी
2: वो नाक से सिंदूर लगाती है दुल्हन को।
1: हाँ,
2: तो उसका यही है कि हमेशा इसका सुहाग इतना अमर रहे।
1: अमर रहे।
2: जी, तो ये मेन रीजन है नाक से सिंदूर लगाने का।
1: तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और श्रोतागण आप सब रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन लिंक हम दर्पण फोरम में डाल देंगे, जो भी महिलाएं शामिल होना चाहें या देखने भी आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है
2: जी
1: ना।
2: जी जी
1: तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कब तक कर सकते हैं और क्या उसकी फ़ी वगैरह भी है? फीस है उसके?
0: जी एक बहुत नॉमिनल सा फी है जो
1: जी
0: कि हम लोग व्रत की चीज़ें अरेंज कराने के लिए
1: बिल्कुल
0: या जो डिनर है, जो नॉन व्रती हैं जो लोग डिनर करते हैं या बैंक्वेट हॉल का कॉस्ट है उसको कवर करने के
1: कवर
0: लिए एक
1: करने के
0: नॉमिनल सा
1: जी।
0: फी है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप तारीख बता दीजिए, जगह बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए कि कहाँ पहुँचना
0: तो
1: है।
0: ये 14 सितंबर सोमवार को 5:30 बजे शाम से, ये पूजा विशेषकर शाम को ही होती है,
1: जी
0: शाम से लेकर रात तक है। और ये ड्यूरल में मेडिसिन फंक्शन सेंटर एक बैंक्वेट हॉल है वहाँ पे किया जा रहा है, सो दैट कि पूजा के बाद जो लोग नॉन व्रती, जो लोग व्रत नहीं करें उनके लिए वहाँ पे खाने पीने और सभी कुछ का इंतजाम है।
1: व्यवस्था रहेगी।
0: और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पे डेकोरेशन, हम लोग झूले लगाते हैं कि जो
1: अरे
0: लोग
1: वाह,
0: हाँ व्रती हैं वो लोग अपना वहाँ फोटो वगैरह करा सके, हस्बैंड वाइफ या अकेले या
1: तो
0: सहेलियों के
1: बिल्कुल
0: साथ।
1: फेस्टिवल का माहौल
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल
1: क्रिएट
0: कि
1: करते
0: बिल्कुल
1: हैं। बहुत ही सुंदर। श्रोताओं, अगर मैं तो जा रही हूँ और इजी भी हो जाएगा, व्रत रहती हूँ तो मुझे सारी तैयारी खुद करनी पड़ती है, आप लोगों ने आसान कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हरियाली तीज के बारे में। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? नीता जी, आपसे शुरू करते हैं।
2: जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँ कि अगर तीज नहीं भी करते हैं तो आपको एक बार आके हमारा तीज देखना चाहिए कि
1: हाँ
2: हम कैसे साथ में करते हैं, कितना अच्छा माहौल होता है, कितनी पॉजिटिव माहौल होती है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आएँ हमारे तीज वाले फेस्टिवल में। थैंक यू।
1: जरूर।
0: एज अ BJCA मेंबर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस संस्था की पार्ट हूँ और हमारा एक यहाँ पे BJCA फैमिली है जो कि हर दिन बढ़ रहा है।
1: जी
0: तो हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और देखें हम कैसे अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं। तीज के त्यौहार में आए और जैसा नीता ने बताया छठ का महापर्व है, तो ये बिहारी और नॉन बिहारी की बात नहीं है, कोई भी आ सकता है। हम लोग सबको हार्दिक दिल से वेलकम करते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात, और फिर से आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिएगा, जो भी कार्यक्रम BJCA कर रहा है, दर्पण स्टूडियो में आइए, हमारे श्रोताओं को इन सब बातों से अवगत कराएं ताकि भारी संख्या में हम शामिल हो सकें और जुड़ सकें।
2: थैंक यू
1: धन्यवाद,
2: रिचा जी। थैंक यू
1: नमस्कार।
0: रिचा जी।

0: can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
1: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।

0: personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
2: श्रोताओं, अब बारी आती है जन्माष्टमी की. हम बातचीत करेंगे जन्माष्टमी की. आपको पता ही है कि भारत में जो है नागपंचमी का पर्व जब शुरू होता है, वो पहला पर्व होता है साल का, और उसके बाद दिवाली तक जो है वो त्योहारों की झड़ी लग जाती है. चाहे वो सावन का त्यौहार हो, नागपंचमी हो, जगह जगह रुद्राभिषेक होते हैं. उसके अलावा जैसे सावन फिनिश होता है, जन्माष्टमी की तैयारी हो जाती है. तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्माष्टमी की, और बातचीत करेंगे ऋचा व्योम जी से, जो कि पहले भी आ चुकी है दर्पण स्टूडियो में. बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं, हरि कीर्तन, बहुत सुंदर बातें करती हैं और बहुत ही मधुर आवाज़ है. तो आइए सबसे पहले ऋचा जी का स्वागत करते हैं. सो ऋचा स्वागत करती है, ऋचा का बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी दर्पण रेडियो पर आपका.
3: हरे कृष्णा ऋचा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे फिर से बात करके, आपसे और सुनील जी से वार्तालाप करने के लिए, और मुझे वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच.
2: आप स्टूडियो में रहती हैं तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं हरि कीर्तन से, लेकिन आज हम फोन से जुड़े हैं तो इसलिए वो कीर्तन तो नहीं हो पाएगा आपको. हरे कृष्णा. तो ये इस बार जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम हो रहा है वो इस्कॉन ऑर्गेनाइज करता है. हर साल भव्य पर्व होता है जन्माष्टमी का, तो उस बारे में हमें बताइए हमारे श्रोताओं को कि सिडनी इस्कॉन, ये पर्व जो है इस्कॉन वेस्ट सिडनी के साथ मनाया जा रहा है, तो कैसे जुड़ना हुआ आपका इस फेस्टिवल से, और आप इवेंट एंकरिंग कर रही हैं, तो कैसे जुड़ना हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी?
3: हरे कृष्णा. मैं सबसे पहले तो शुरुआत करना चाहती हूँ दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को अपना प्यार भरा नमस्कार और हरे कृष्णा के साथ. और आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, क्योंकि आज मुझे आपके प्रश्न से याद आया कि मैं 15-16 वर्षों से इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हरे कृष्णा कम्युनिटी एंड कल्चरल सेंटर की स्थापना करीब 8 वर्ष पूर्व हुई, और ये भव्य मंदिर निर्माण के लिए हुई थी, इसलिए मैं तब से शुरू से ही पहले दिन से ही इस टीम से जुड़ी हुई हूँ.
2: बहुत अच्छी बात. तो जन्माष्टमी के बारे में थोड़ा पहले बता देते हैं श्रोताओं को कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का आध्यात्मिक महत्व क्या है, और आज के समय में कृष्ण का संदेश हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है.
3: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है. पहले तो जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जो कि हमारे परम भगवान हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, उनके धरती पे अवतरित होने का दिवस है, जो कि भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. हर वर्ष विश्व के कोने कोने में ये बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है. और जहां तक कि आपका प्रश्न है कि इस भगवान के जन्म का आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अर्जुन से भगवद गीता में ये बात करी थी कि वे 3 कारणों से अवतरित हुए थे. परित्राणाय साधु नाम, साधुओं अर्थात भक्तों की रक्षा के हेतु, विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों का नाश करने, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए वे धरती पे आए थे. अब आज के समय में कृष्ण भगवान का ये संदेश हमारे जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है, ये तो हम देख ही सकते हैं. अभी नेपाल में इतनी बाढ़ आई है, कितना विनाश हुआ है, कितनी वॉर्स चल रही हैं, विश्व युद्ध चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में हम चारों तरफ विनाश ही विनाश देख रहे हैं. और भगवान ने भी यही कहा, संदेश दिया है कि यह जो संसार है ये माया नगरी की तरह है. दिस इज अ परमानेंट प्लेस ऑफ सॉरी दिस इज अ इम्परमानेंट प्लेस ऑफ मिजरी. और हम सब जीव जो है इस माया नगरी को अपना परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस समझ लेते हैं. ये हमारी भूल है, क्योंकि यहाँ पे हर कदम पे खतरा है, हर कदम पे विपदा है, क्योंकि यह जगत दुखालयम अशाश्वतम कहलाता है. इट इज अ प्लेस ऑफ मिजरी एंड इट इज ओनली अ टेम्पररी प्लेस ऑफ रेजिडेंस. तो हमारा परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस फिर क्या है, ये प्रश्न उठता है. और भगवान स्वयं भगवद गीता में ये इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उनका जो स्पिरिचुअल होम है वैकुंठ ही हमारा परम धाम है. हमारा अपना गोल होना चाहिए जीवन का, वैकुंठ वो जगह है जहाँ कोई भी कुंठा या मिजरी नहीं होती. तो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति अगर चाहिए तो हमें हरि नाम की औषधि को ग्रहण करना चाहिए, जो कि इस भव रोग की दवा है
2: जी. और तो ये इससे जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है ऋचा जी, कि कृष्ण जन्म की जो कथाएं हम सुनते हैं, जो भजन कीर्तन करते हैं, नृत्य और नाटक के माध्यम से उन्हें जानते हैं, तो क्या ये सब केवल उत्सव का हिस्सा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है?
3: आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिख रहे हैं मुझे. सारे श्रोताओं को ये बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के कि आपका प्रश्न इतना उत्तम है. तो जैसे कि आपने कहा, कृष्ण जन्म की कथा सुनना, भजन कीर्तन देखना और सुनना, नृत्य और नाटक, ये सब लीलाओं भगवान लीलाओं को याद देखकर हम भगवान का स्मरण करते हैं. तो उनके जन्म के पावन दिवस में हम इस तरह के सारे जो एक्टिविटीज करते हैं, जो सर्विसेज करते हैं, भजन कीर्तन, नृत्य नाटक, कथा, वो सब जो है हम भजन कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं. और इन सब चीजों से ना ही केवल हमारे पापों का नाश होता है, बल्कि हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस भी प्योरिफाई होती है, पवित्र होती जाती है. और इस प्रकार हमारे मन में भक्ति का बीज अंकुरित होता है, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं.
2: जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही. तो अब हम लौटते हैं जन्माष्टमी पर्व पर. तो इस साल क्या खास हो रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है ये पर्व, और किस दिन मनाया जा रहा है, समय वगैरह, सो सब विस्तृत जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए.
3: जी हाँ, बिल्कुल. तो बहुत ही जल्द अगले शनिवार 5 सितंबर 2026 5 सितंबर को जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाया जा रहा है
2: जी.
3: तो वेन्यू नोट करिए, हार्वी लोई पवेलियन, डोरन ड्राइव, कासल हिल. बहुत दूर नहीं है, सेंट्रली लोकेटेड वेन्यू है. यह हिल्स शोग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है. यहाँ एक बहुत बड़ी पार्किंग जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वो भी मौजूद है. और हमारा प्रोग्राम भी बिल्कुल निःशुल्क है, एज यूजुअल हमेशा ही हमारा प्रोग्राम, उसमें कोई एंट्री फी नहीं होती. और प्रोग्राम हमारा 11 बजे सुबह स्टार्ट होगा अगले शनिवार, और रात मध्य रात्रि 12 बजे तक चलेगा. बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह से यह महामहोत्सव मनाया जाएगा.
2: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता जुड़ें और इसका लाभ उठाएं और इस पर्व को सेलिब्रेट करें. तो ये भी पूछना चाहूंगी ऋचा जी कि जन्माष्टमी पूरे परिवार के साथ मनाने वाला पर्व है, इस बार बच्चों के लिए क्या कोई खास आकर्षण है? हमारे बच्चों के लिए क्या खास रहेगा इस साल?
3: हमारे बच्चे तो हमारा असली खजाना है, तो इन बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम हमेशा बहुत भव्य इंतजाम करते हैं. तो इस बार बच्चों के लिए कई आकर्षण हैं. सबसे पहला आकर्षण छोटे बच्चों के लिए जंपिंग कासल. और जैसा कि आप जानती हैं, फूड स्टॉल्स तो हमेशा ही सबको आकर्षित करते हैं, बच्चों को क्यों नहीं करेंगे. तो फूड स्टॉल में बहुत सारे व्यंजन है, फोटो बूथ है, और फेस्टिवल से जुड़ा, महोत्सव से जुड़ा दही हांडी, ब्रेकिंग द बटर पॉट, ये एक बहुत ही बड़ा मेन आकर्षण होता है हर साल. ये हम इस बार दो बार कर रहे हैं, एक शाम को 5 बजे और दूसरी बार 8:30 बजे रात में, जिससे कि जो लोग देर से आए वो भी इसमें हिस्सा ले सकें। और श्री कृष्ण को झूला झुलाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेस्टिवल का, जो कि बच्चों को बहुत लुभाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। और बुक स्टॉल, गिफ्ट शॉप्स, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स, बच्चों के कपड़े, बच्चों की बहुत ही अनेक प्रकार की किताबें जो उन्हें बहुत लुभाएंगी, ये सब हमारे फेस्टिवल का हिस्सा है।
2: बहुत सुंदर। और जो भक्त स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण के पूजन में सहभागी बनना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं या शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
3: जो लोग श्री राधा कृष्ण की पूजा में सहभागी होना चाहते हैं वो बहुत तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। जितना भी योगदान वो देंगे लक्ष्मी या धन राशि के रूप में, वो सब जाएगा नए टेंपल, नए मंदिर के निर्माण कार्य में। तो सबसे पहले भक्तों के लिए हवन का आयोजन है, पूजा थालियां खरीद कर वो भगवान को स्वयं ही ऑफर कर सकते हैं। हमारे पुजारी मेन ऑल्टर पे रेडी होंगे उन्हें उनकी सहायता करने के लिए। और डोनेशन और कैश डोनेशन या एफपोस्ट डोनेशन से वो भगवान का अभिषेक, भगवान की आरती को स्पॉन्सर भी कर, और आरती प्रसादम श्रीमद भागवतम के सेट को स्पॉन्सर करके वो एक पीकॉक मेटल लैम्प एज अ गिफ्ट रिसीव करेंगे। और जहां तक अर्चना का सवाल है, यशोदा दामोदर की भव्य मूर्ति, श्री कृष्ण का झूला झुलाना और साथ में महामंत्र को गाना, ये सबसे बड़ी सेवा हम सारे ऑडियंस से करबद्ध विनती करते हैं कि जब वो आए तो महामंत्र के गाने में हम सबको कॉल एंड रिस्पांस के साथ सहयोग दें। वैष्णव भजन, बहुत पॉपुलर वैष्णव भजन और कीर्तन होता है, उसमें जब वो साथ देंगे तो उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो ये सारे आकर्षणों के साथ साथ हमारा नृत्य नाट्य, भावपूर्ण नृत्य होगा, ड्रामा होगा, उसमें वो मनोरंजन भी ले सकते हैं और साथ में भक्ति के क्रेडिट पॉइंट्स भी अपने लिए ले सकते हैं। तो ये सारे आकर्षण हैं।
2: जी, ये तो बहुत ही भव्य लग रहा है मुझे कार्यक्रम ऋचा जी, जिस तरह से आप वर्णन किया, और क्या हिंदी आपने बोली ऋचा जी। और बहुत दिनों बाद ये शब्द सुना मैंने कि करबद्ध प्रार्थना है, तो मैं भी अपने श्रोताओं से करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि वो पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जैसा आपने कहा कि नृत्य जो है वो आप मनोरंजन के तौर पे भी देख सकते हैं और ये भावपूर्ण है, तो उस भाव का भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो ऋचा जी, आपने मंदिर निर्माण की बात की, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हो गया है और नए इस्कॉन मंदिर के बारे में बताइए कि कैसा चल रहा है मंदिर निर्माण, कब तक ये समाप्त होगा, और जो भी इसमें मदद करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं।
3: तो भव्य मंदिर का निर्माण बहुत दूर नहीं, हमारे विन्यार्ड जो कि मगराथ हिल में है, 10 मिनट की ड्राइव फ्रॉम बॉक्स हिल, वहां पे हो रहा है। टेंपल का एड्रेस है 217 विंजर रोड विन्यार्ड। और जो ये निर्माण कार्य है ये कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन अभी ऑलरेडी पहला और दूसरा फ्लोर पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही भव्य मंदिर 4 एकड़ के एरिया में हो रहा है। तो भगवान की बहुत ही भव्य विशाल मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है, तो इसमें श्री श्री राधा गोविंद जी स्थापित होंगे। और साथ में राम जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि श्री राम परिवार भी स्थापित होगा, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी भी होंगे और गौर निताई की बहुत भव्य मूर्तियां भी स्थापित होंगी।
2: बहुत ही अच्छी बात, और हम देखने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं कि कब ये निर्माण कार्य पूरा हो और हम देखें। तो ये मंदिर जो है वो एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत पहुंचाने का एक माध्यम भी होगा। इस मंदिर से कम्युनिटी को किस तरह से लाभ मिलने की उम्मीद है ऋचा जी?
3: मंदिर से जैसा कि आपने कहा कि आज की पीढ़ियां ही नहीं आगे आने वाली कितनी पीढ़ियां लाभ उठाएंगी, पर जो मंदिर हम बनवा रहे हैं ये इतना भव्य है, इसमें एक बहुत ही बड़ा मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सेंटर होगा जिससे कि यंग लोगों की शादियां, संस्कार, जितने भी संस्कार जो हम चाहते हैं कि हम इंडिया जाते करवाते, वो सब अब हम इस भव्य मंदिर में आयोजित कर सकते हैं। इसमें साथ ही भगवद गीता के क्लासेस और बच्चों के लिए गुरुकुल क्लासेस का आयोजन है, जो कि ऑलरेडी हमारे 17 लोकल सेंटर्स में ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन जब मंदिर आ जाएगा तो एक सेंट्रलाइज्ड जगह होगी, एक सेंट्रलाइज्ड स्थान होगा जहाँ सारे लोग इकट्ठे होके जप और बहुत सारी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को एक साथ सीखने की जगह पे मौजूद हो पाएंगे।
4: और भोजन वगैरह भी की व्यवस्था होगी वहाँ?
3: हाँ, मंदिर में एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल क्लास, गेस्ट हाउस, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट, कमर्शियल किचन, और हम लोग ऑलरेडी एक फूड फॉर लाइफ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस करते हैं, तो उसके लिए हमें बड़े से किचन की जरूरत पड़ती है। और जो महामहोत्सव जो हम मनाते हैं वो अब जब मंदिर में आएंगे तो हमें एक बड़े कमर्शियल किचन की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज उस नए भव्य मंदिर में होंगी।
2: बहुत अच्छी बात ऋचा जी, आपने बहुत कुछ बताया जन्माष्टमी के बारे में। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि इस कार्यक्रम में जाऊँ, भाग लूँ, और जो है वो डिवाइन जो आध्यात्मिकता और भावना की आप बात कर रहे हैं उसका आनंद उठाऊँ और फेस्टिविटी का भी मज़ा लूँ। आपने कहा सुंदर भोजन है, झूले हैं, तो बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो ये बताइए कि वॉलंटियर्स को आपने बताया कि तरह तरह से वो सेवा कर सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं, पार्किंग की सुविधा है वहाँ पे, तो अंत में जाते जाते आप क्या हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगी कि इस्कॉन जन्माष्टमी में वो आएं और पधारें, वो इस उत्सव से क्या लेकर जाएंगे, केवल एक खूबसूरत दिन की याद या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके संदेश को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा करेंगे?
3: आपका सवाल फिर से बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं माफी चाहूंगी, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपसे बताना चाहती हूँ, सब श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, जिससे कि वो महामहोत्सव में उपस्थित हो सके। तो कैसे आप रजिस्टर करेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो रजिस्ट्रेशन हमारे, मैं दर्पण रेडियो के ग्रुप में भी पोस्ट करूंगी इसका फ्लायर, लेकिन अगर श्रोता, बहुत सारे श्रोता जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, वो हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू QR कोड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटोरी। तो हमारा फेसबुक पेज है HKCCC108। मैं फिर से बोलती हूँ, HKCCC108। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है HKCCC_Sydney। हमारी वेबसाइट है HKCCC.com.au। तो प्लीज मेक श्योर कि आप रजिस्टर जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि आप आ रहे हैं, और वॉलंटियरिंग के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और हमारे पूज्य शिक्षा गुरु श्री विजय गोपीकेश के नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। उनका नंबर है, प्लीज नोट करें, 0410-076-030। बिजनेस मार्केटिंग के लिए भी एक नंबर मौजूद है, जो लोग रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट ओनर्स, लीगल फर्म्स, मोटर डीलरशिप, ज्वेलरी, इंडियन शॉप, सारीज या ग्रोसरी स्टोर्स के बिजनेस ओनर्स हैं, तो हमारे बिजनेस स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं। तो आप विपिन बिहारी को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर नोट करें, 0451-083-018।
2: धन्यवाद ऋचा जी, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने विस्तार से बताया हमें जन्माष्टमी के बारे में। दर्पण परिवार से आप सबको बहुत शुभकामनाएं कि ये कार्यक्रम सफल रहे और सभी लोग इससे जुड़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू। धन्यवाद जिचा जी। और आपका जो ये सवाल था, जिसका जो प्रश्न जिसका मैं जवाब नहीं दे पाई
4: जी जी।
3: वो मैं ये कहूंगी कि हर वो व्यक्ति जो पहली बार इस्कॉन में जन्माष्टमी महामहोत्सव में उपस्थित होगा, वो क्या लेकर जाएगा? क्या केवल एक खूबसूरत दिन की याद
4: जी।
3: या श्री कृष्ण की भक्ति और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा? तो मेरा इस प्रश्न का एक बहुत ही सुंदर उत्तर है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहली बार आने वाले जितने भी छोटे बच्चे होंगे, ये जन्माष्टमी एक संस्कार का काम करेगी। श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का स्पिरिचुअल इम्प्रेशन एक बहुत ही खूबसूरत याद से बहुत बहुत ऊंचा होता है। तो वो बच्चों का संस्कार हो जाएगा। और हर बड़े व्यक्ति के लिए मैं ये कहूंगी, वेलकम टू आवर फैमिली, यह वासुदेवम कुटुंबकम है, जहां हम सब मिलकर भक्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज का एक श्लोक मुझे याद आया, जो कि आजकल की जो कलयुग की जनता है, उस सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो वो मैं रिसाइट करके ये इंटरव्यू समाप्त करना चाहूंगी।

0: मनश्चभद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व में मंगल व कल्याण हो, ईर्ष्यालु व दुर्जन लोग शांत रहें, समस्त जीव एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हम सबका मन इंद्रियों से परे अगाध भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगकर शांत रहे, हमारी बुद्धि बिना किसी स्वार्थ या हेतु के निरंतर भगवान की भक्ति में मिलकर लीन रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
1: हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर बात आपने कही और हम सबको ये चरितार्थ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी। हरे कृष्णा।
0: हरे कृष्णा। थैंक यू दर्पण रेडियो की टीम, आपको और सुनील जी को भी धन्यवाद और हरे कृष्णा।
1: श्रोताओं, ये थी बात जन्माष्टमी की। आपको ये बता दें कि हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी जन्माष्टमी का पर्व मना रहा है, जिसमें दही हांडी का भी महोत्सव होगा। ये हो रहा है सैटरडे 5 सितंबर को 6 बजे से 9 बजे तक। इसका वेन्यू है निरंकारी भवन 166 ग्लेन डेनिंग रोड, ग्लेन डेनिंग। ये भी फ्री इवेंट है और इवेंट के अट्रैक्शन जो है वो भजन होगा, प्रसाद होगा वहाँ पे, भोजन प्रसाद, राधा और कृष्ण की झांकी होगी, बच्चों के लिए कंपटीशन होंगे जो बेस्ट ड्रेस्ड में आएंगे, और गिफ्ट वगैरह भी बच्चों के लिए रहेंगे। तो इसमें भी बहुत अट्रैक्शन है। जन्माष्टमी का त्यौहार तो जो है वो बहुत ही भव्य होता ही है और जगह जगह मनाया जा रहा है सिडनी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सूचना थी हिंदू काउंसिल की। इसमें अगर आप संपर्क करना चाहें तो श्री से कॉन्टैक्ट कीजिए 0415 583 700। राहुल का फ़ोन नंबर है 0403 519 684। और स्पॉन्सरशिप के लिए जयदीप को कॉल करें 0450 772 126। सो ये जानकारी थी हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की।
2: Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413-385-976.
3: Darpan Hindi कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413-385-976।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
3: श्रोताओं, त्योहारों की बातें हो गई, जन्माष्टमी की बात हो गई, अब चलिए वापस लौटते हैं शैलेंद्र जी की ओर। तो शैलेंद्र जी की कुछ ख़ास बातें और आपको बताना चाहूँगी। शैलेंद्र जी ने जो गीत लिखा था, मेरा जूता है जापानी, इस गीत ने देश की बदलती सोच को और आम आदमी के आत्मविश्वास को आवाज़ दी। गीत सरल था लेकिन संदेश बहुत बड़ा। वो लोक भाषा और बोलचाल के शब्दों का बेहद खूबसूरत इस्तेमाल करते थे। उनके गीत पढ़ने से ज़्यादा सुनने पर दिल में उतरते थे। कहते हैं शैलेंद्र और सलिल चौधरी की जोड़ी ने भी कई यादगार गीत दिए, जैसे दो बीघा जमीन का धरती कहे पुकार के, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ऐसे गीतों के माध्यम से उन्होंने मनोरंजन के साथ जीवन का दर्शन भी बड़ी सहजता से रख दिया। वो अपने गीतों में साहित्य और सिनेमा के बीच पुल बनाना चाहते थे, इसलिए उनके गीत कहानी का हिस्सा लगते हैं, सिर्फ गीत नहीं। उनकी लेखनी में गरीब और साधारण इंसान के प्रति गहरी संवेदना थी। शायद यही कारण है कि उनके गीत आम लोगों से इतनी गहराई से जुड़ गए। शैलेंद्र जी की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो बड़े दर्शन को छोटे और आसान शब्दों में कह देते थे। तो श्रोताओं, इस तरह से शैलेंद्र जी जो है वो अमर हो गए गीतों के माध्यम से। वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन शब्द उनके आज भी हमारे साथ हैं। शायद यही एक सच्चे गीतकार की सबसे बड़ी पहचान है। इंसान चला जाता है, गीत नहीं। आइए सुनते हैं उनके कुछ और गीत।

0: सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कितनी गहरी बात और कितनी सच बात कही शैलेंद्र जी ने। एक ही गीत उनके इतने मीनिंगफुल और दिल को छूने वाले। श्रोताओं, आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में राजेश पांडे जी को और यतिन जी को भजन बहुत पसंद आया। चेतन शाहजी लिखते हैं, लेट्स प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ द फैमिली फ्रॉम द सिडनी सबर्ब ऑफ चेरीब्रुक, ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप ऑफ अबाउट 15 ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स टू द हिंदू सेक्रेट साइट ऑफ माउंट कैलाश इन नेपाल। राजीव निगम जी लिखते हैं, नमस्कार जी, नाइस वी आर हियरिंग शैलेंद्र सॉन्ग, ग्रेट। लीला तिवानी जी लिखती हैं, ऋचा जी, कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है, धन्यवाद लीला जी। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं, आज गीतकार शैलेंद्र की जयंती के अवसर पर ऋचा जी ने सुंदर कार्यक्रम की रचना की। कार्यक्रम के आरंभ में ही शैलेंद्र जी के बारे में कितनी खूबसूरत जानकारी उनके शोध के स्तर को दर्शाती है। शैलेंद्र जी ने भारतीय सिनेमा में कई कालजयी गीत दिए हैं, उनमें से दो तो हम सुन ही चुके हैं। धन्यवाद प्रदीप जी कमेंट्स के लिए। लीला तिवानी जी जो हैं, एक कजरी उन्होंने पोस्ट की है बहुत अच्छी सी, सावन की भीगी बयार, कजरी की मीठी तान, मन के सुने आंगन में जैसे हो नई नवेली उड़ान, दादुर मोर पपिहरा बोले, कोयलिया कूके अमराई, सखियां मिलकर झूले गाएं, प्रकृति ने ली है अंगड़ाई। तो ये बहुत ही सुंदर कजरी, धन्यवाद लीला जी। प्रदीप कुमार जी लिखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी। लीला तिवानी लिखती हैं, हरतालिका की बहुत अच्छी जानकारी। शैलजा जी लिखती हैं, शैलेंद्र जी के जीवन की झलकियां इस अमर कवि को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आभार। जसप्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं, ग्रेट इन्फॉर्मेशन ऑन बिहार कल्चर एंड कस्टम्स, ब्यूटिफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू BJCA। शैलजा जी फिर लिखती हैं, नीता जी व श्वेता जी का प्रयास भारतीय परंपराओं व संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से प्रशंसनीय है। यही है समाज के दिग्गज जो भारत की दिव्य ज्योति के संरक्षण हैं। ऋचा जी का स्वागत, उनके आध्यात्मिक व धार्मिक विचार उनके व्यक्तित्व का परिचायक व अनुकरणीय है। कृपया कासल हिल का पूरा पता इस ग्रुप में लिख दीजिए। जी जरूर भेजेंगे हम। मंदिर का भव्य रूप व इसकी असीमित संभावनाएं भारत ही नहीं देश भर के लिए नव जागृति का संदेश है। इस्कॉन के हम आजीवन आभारी हैं। धन्यवाद शैलजा जी। जसप्रीत चोपड़ा जी लिखते हैं, प्लीज़ ऐड द डिटेल्स ऑफ इस्कॉन, वो हमने भेज दिया है ग्रुप में, आप सारी जानकारी ले सकते हैं। सुरेश जी लिखते हैं, थैंक यू फॉर अनाउंसिंग, जो हिंदू काउंसिल का हमने अनाउंस किया है वो भी जानकारी ग्रुप में है। तो सभी जानकारी ऋचा व्यूम ने भेज दी है जन्माष्टमी से संबंधित। आप सब भारी संख्या में इन कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और आनंद लें। शैलजा जी लिखती हैं, दिल है हिंदुस्तानी विश्व के सदाबहार गीतों में से एक है, जिसका जादू 75 वर्षों के बाद भी बरकरार है। बिल्कुल सही बात शैलजा जी, और जितना मैं पढ़ रही थी शैलेंद्र जी के बारे में और उनके गीतों को सुन रही थी, उनकी सूझबूझ और उनके सरल शब्दों का जो है ना और भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता जा रहा है। तो ये 75 वर्ष क्या, मुझे लगता है ये हज़ारों साल तक ये गीत जो हैं वो ऐसे ही जीवित रहेंगे और उन्हें हम पसंद करते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम श्रोतागण आप लोग को पसंद आया होगा। आगे भी आप ऐसे ही कमेंट देते रहिए, जिससे हमें सुविधा होती है कि हम और बेहतर प्रयास करके बेहतर प्रोग्राम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद, नमस्कार।
1: Roger that. क्या आप ऐसे काम की खोज में हैं जो आपको बहुत कुछ दे सके? ज्यादा जोश, ज्यादा ठोस काम, ऐसा काम जिससे आप अपने स्थानीय समुदाय में बदलाव ला सकें? पुलिस रिक्रूट्स सर्च करें, NSW पुलिस फोर्स, हमारा काम बहुत मायने रखता है।
2: 2000 station sponsor.
3: Got that.

0: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
1: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au.